0: तू सदा।
1: FM 100's Time Check. It's 7 a.m.
2: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पे एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
3: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
4: facebook.com/fm247365
5: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Shifa wahan se shuru hoti hai jahan kudrat muskurati hai. Schwabe Single Remedies. कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो.
2: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन. मैं पाकिस्तान कार्डियो सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूं. ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है. ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है. अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है. वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं.
3: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है.
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें. कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है. इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 7:30 AM. This time check is brought to you by
1: Dettol Filter. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: Hello, guess what? Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features जैसे push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims और sunroof के साथ full premium feel. और price? सिर्फ 64,49,000. Pre-booking is open now, so जल्दी करें और अभी अपनी nearest Hyundai dealership visit करें.

0: बड़ा आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पे एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
2: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
3: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स, जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
4: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
5: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
6: Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पर बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
1: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
2: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप

0: विजिट करें।
1: हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद, वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावन से।
2: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
5: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मयुद्दीन मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ ब्लड प्रेशर को आमतौर पे एक खामोश कातिल एक सांप के तौर पे बताया जाता है ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं
6: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: हेलो गेस व्हाट Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
8: शोबे सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान 75 सालों से आपका एतमाद
7: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
9: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2,500
10: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात
9: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो
11: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: सामने वालों का बकरा भी आ गया। बाबा चले ना मंडी।
2: अभी चलते हैं।
3: पैसे रख लिए?
2: किस लिए? अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है बराहे रास्त।
4: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रास से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री। तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराहे रास्त।
0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
7: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
9: एंड अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
10: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
11: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराहे रास्त।
11: एंड डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
4: एंड
12: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
13: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए कहें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
16: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
17: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
18: हमारी जिम्मेदारी है।
19: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
8: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath full premium feel. Aur price sirf 64,49,000. Pre-booking is open now, so jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पे एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
3: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
4: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज़।

0: टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
6: एंड अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
9: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
8: एंड डेटॉल फूल सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
10: एंड AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
11: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365.

0: 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Dettol Pulso. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: Hello, guess what? Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features जैसे push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims और sunroof के साथ full premium feel. और price? सिर्फ 64,49,000. Pre-booking is open now, so जल्दी करें और अभी अपनी nearest Hyundai dealership visit करें.

0: ने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है।
4: फैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिस्पन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाब सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
8: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
7: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।

0: वाह भाई, गाय बकरे सब बिक गए, कैश रख लिया ना इबादत से?
1: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज बैंक अकाउंट में, पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रात से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
2: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराहे राज।
3: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
4: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
5: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
3: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
9: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
10: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
9: एंड
11: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
9: एंड
12: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
9: एंड
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
9: एंड
2: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराहे राज।
9: एंड
5: डेटॉल फूल सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
9: एंड
13: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
14: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365।

0: dark ages of radio, it used to sound like this. Then, we introduced this.
1: This is FM 100.
2: Across the nation.
0: Some Assalamu alaikum, Pakistan. And even after decades, it is the most happening salutation on the airwaves. FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan.
3: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
5: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
6: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
7: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
8: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ ब्लड प्रेशर को आमतौर पे एक खामोश कातिल एक सांप के तौर पे बताया जाता है ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं
9: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है
10: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
11: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात ढाई हजार
12: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात
11: एक दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो
13: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है
10: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
14: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना

तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Vikai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
3: क्या देख रहे हो
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल। हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
0: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
4: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: सामने वालों का बकरा भी आ गया। बाबा चले ना मंडी।
1: अभी चलते हैं।
2: पैसे रख लिए?
1: किस लिए? अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है बराहे रास्त।
3: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रास्ते से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री। तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराहे रास्त।
4: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
5: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
6: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
7: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
10: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
11: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
12: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
13: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
10: एंड
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
10: एंड
3: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराहे रास्त।
10: एंड
6: डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
10: एंड
14: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
15: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
16: FM 247365.
17: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
18: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: किसने कहा था पैसे

0: This program is brought to you by
1: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पावे
2: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स
4: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
6: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
7: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त
6: एंड डेटॉल फिल्टर ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
8: एंड AGS ट्यूबलेट दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम
9: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
10: FM 247 365 100 FM.
11: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: बड़ा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबिस सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल। हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
3: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: वाह भाई, गाय वगैरह सब बिक गए, कैश रख लिया ना इबादत से?
1: कैश अब जेब में नहीं, बराए रास्त बैंक अकाउंट में, पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रात से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
2: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
3: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
4: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
5: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
6: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
9: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
10: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
11: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
12: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
5: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
2: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
5: एंड डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
13: एंड AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
14: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज़.

समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।

0: टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500.
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
3: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
4: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे. अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.

तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।

0: क्रॉस।
1: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
2: हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद, वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक, 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमाती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तआवुन से।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
5: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
7: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
8: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
9: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
1: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
9: एंड डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
1: एंड
10: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
11: ख्वातीनो हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जायद कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेलजोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247

समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल। हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।

फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: थर्मोफ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: FM 24/7/365

0: 7:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज

0: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशे की बुनियाद, वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक। 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमाती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर, एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावुन से।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 24/7/365

0: on.
1: हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद, वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक, 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर, एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के ताबुन से।
2: हाई फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स are silently destroying our dreams, lives and our families. The anti-narcotics force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
3: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. This is your music.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
2: नशा परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम, हुकूमत

आंखों में देखो प्यार। This is your music.

0: keep it locked to 100 FM.
1: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
2: This program is brought to you by
3: हंडे लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: पहुँचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
5: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
2: This program is brought to you by
1: High Blood Pressure से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद, World Hypertension Week। 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमाती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर, एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावुन से।
2: This program is brought to you by
3: हंडे लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
7: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
8: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
8: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
9: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
7: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
12: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Schwabe Single Remedies तैयार की जाती है 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। Schwabe Single Remedies Germany और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है, तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: This program is brought to you by
6: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
7: Gali mohallon mein safai ka khaas khayal rakhein, kahin par pani khada na hone dein, dengue janleva marz hai, ilaaj se behtar ehtiyat hai. This public service message is brought to you by FM 100.
8: Like us on facebook.com/FM247365.

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
2: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
3: Like us on facebook.com/FM247365.

0: 247-365. FM 247-365. Keep it locked to 100 FM.
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
2: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365। FM 247365।
5: In the rhythm of life, rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
7: Assalamu alaikum, Pakistan.

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीत के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीत से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीत, रिश्ता भरोसे का।
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: बैठ के 3 घंटा ड्रामा देते फिर जाए, ये ऑडियंस बनाना बहुत मुश्किल है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ड्रामों में आते हैं और हमारे ड्रामों को पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे ड्रामे कराची के होते ही फैमिली ड्रामे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो वो देखा आपका तो सिर्फ स्क्रिप्ट सेरेमनी में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए।
0: माशाल्लाह 80 आदमी का खाना था, 100-150 आदमी आ गए।
1: 100-150 आदमी आ गए,
0: पता नहीं मैं समझा किसी आर्टिस्ट की बेटी रुखसत हो रही है या किसी का निकाह हो रहा है। इतने लोग कहाँ से आ गए, नीचे रिहर्सल कर रहे थे वो भी आ गए, दूसरे भी घूमते हुए आ गए। लेकिन अल्लाह इज्जत रखने वाला है, जो मेरे स्पॉन्सर थे उन्होंने खाना स्पॉन्सर किया है, तो उन्होंने 40 आदमी का खाना उसी वक्त मंगवा दिया।
1: अच्छा, ये बड़ी बात है ना।
0: और अल्लाह का
1: उन्होंने सिचुएशन हैंडल,
0: और बहुत अच्छी ओपनिंग हुई, ग्रैंड ओपनिंग जिसको कहते हैं, अखबारों में और टीवी की न्यूज में सब जगह चली।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह ओपनिंग हुई है इंशाल्लाह शो भी वैसे ही जाए,
0: इंशाल्लाह
1: शो का भी वही सिलसिला होगा। और क्योंकि बकरा ईद है तो बकरा ईद में
0: थोड़ा ठंडा होता है, बकरा ईद पहला दिन जो होता है वो लोग गोश्त बांटने में फिर थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, आते नहीं है, तो पहले दो शो थोड़े हल्के होते हैं। बासी तिबासी से ये ड्रामा उठना शुरू होता है।
1: अच्छा अच्छा, सही से
0: फिर तो टिकट भी नहीं मिलती इस तरह।
1: टिकट नहीं मिलते, अच्छा तो टिकट एडवांस में।
0: हाँ अल्लाह का शुक्र है हमारी एडवांस में चल रही है।
1: अच्छा,
0: इवन लैंड वालों के पास भी चल रही है, टिकट वाला के पास भी चल रही है, हाँ उधर भी चल रही है, वहाँ बिस्मिल्ला भी हो गई है।
1: अच्छा,
0: और दूसरे ये कि फिर थिएटर पे भी मिलना शुरू हो जाएगी ऑनलाइन। अब तो सारा चक्कर ऑनलाइन हो गया ना, टिकट मंगाओ, पिज्जा मंगाओ, जो मंगाना है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो वो उसमें भी दे रहे हैं। वक्त के साथ साथ सब जगह चल रहे हैं,
1: सब जगह चल रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद फिर गुफ्तगू होगी।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: रास्त।
5: रास्त।
6: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात, कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
7: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म नहीं तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
8: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
9: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
11: FM247365. डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: FM 100. Like us on Facebook.

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
3: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
4: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: प्लाट बनाए करो।
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इसी इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
7: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का। एंड
8: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
7: एंड
9: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: एंड
10: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
7: एंड
11: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
7: एंड
12: डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
7: एंड
13: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
14: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: एंड
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
3: एंड
7: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
3: एंड
8: डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
3: एंड
9: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
10: FM247365 FM247365
11: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
12: Only music, no RJ talk.
11: This is FM 100.
13: Come on.

0: तो है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीद के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीद के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीद से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीद, रिश्ता भरोसे का।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
4: शिफा वहां से शुरू होती है जहां कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
5: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मयूद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पे एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
6: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
4: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
5: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
6: Rast. आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
7: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
8: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लाट बनाए फरो।
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: This program is brought to you by
6: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
7: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
7: एंड
9: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: एंड
10: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
7: एंड
11: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
7: एंड
10: डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
7: एंड
12: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
13: हेलो, गेस व्हाट, हंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडई डीलरशिप विजिट करें।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पर बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो, तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
15: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एक्को लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: कमर में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
5: नई स्कीम,
6: कमिटी,
4: प्लाट बनाए फरो,
6: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो। इसी इजी पैसे टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: This program is brought to you by
9: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
10: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
11: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
12: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
13: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
14: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
13: एंड डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
15: एंड AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
16: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
17: समझे आप ना, कुछ 3 बार मौत देखे
18: टाइम से मनु ऐसे के मैं हूँ, कब्र चला गया, मैं नहीं बचा।
19: फिर उन्होंने साड़ियाँ वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
16: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
20: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
16: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी।
5: ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں، انسانی سمگلروں کے چنگل سے بچے، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
21: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: at 6 p.m. The Shine Check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
3: HBL Freedom Account ke saath. अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान 75 सालों से आपका एतमाद।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहाँ HBL।
6: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मयूदीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पे एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो, तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
7: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL।

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: प्लाट बनाए फरो।
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इसी इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाओ वहां HBL।
6: This program is brought to you by
7: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
8: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
10: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
11: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
12: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
13: एंड डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
14: एंड AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।

0: 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: HBL Freedom Account ke saath. अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
3: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद
4: हायर का नया नो फ्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
5: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल एक सांप के तौर पर बताया जाता है ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं
6: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL

0: पानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: This program is brought to you by
3: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
8: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
7: एंड डेटॉल कूल सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
9: एंड AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
10: facebook.com/fm247365 fm247365

in Drive Time with DJ Casella.

0: locked to 100 FM.
1: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by
2: Dettol Clean Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
3: Hello, guess what? Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features जैसे push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims और sunroof के साथ full premium feel. और price? सिर्फ 64,49,000. Pre-booking is open now, so जल्दी करें और अभी अपनी nearest Hyundai dealership visit करें.
4: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL. घर पे

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
2: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
3: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
4: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।

0: इंट्रांसिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL।
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: किसने कहा था पहले?

0: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
1: नई स्कीम
2: तो मिट्टी
3: लाड बनाए फरो
2: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: This program is brought to you by
6: Har remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paon
7: Bank Al Habib Rishta Bharose ka and
8: agar aap hain drive car bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le
7: and
9: phoenix laga aur bhul ja
7: and
10: live lighter have a weight management conversation with your doctor today
7: and
11: payment usool kare haath ke haath barah raast
7: And
12: Dettol Filter, ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye.
7: And
13: AGS Tubular dikhaye kaam. AGS Tubular Battery, dil ko hai aaram.
14: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: HBL Freedom Account ke saath. अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
3: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ ब्लड प्रेशर को आमतौर पे एक खामोश कातिल एक सांप के तौर पे बताया जाता है ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं
1: ये पैगाम पाकिस्तान कारिक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बनाए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसे टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
9: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
10: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
11: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
12: And live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
13: And payment usul kare haath ke haath, barah raast.
14: And Dettol cool soap. Ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye.
15: And AGS tubular dikhaye kaam. AGS tubular battery. Dil ko hai aaram.
16: 100 FM.
17: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
18: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
19: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
20: FM247365.
21: Evening drive time with DJ Chris.

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Har Remittance Par Shandar Inamaat Jeetne Ka Mauka Paave.
3: Bank Al Habib, Rishta. भरोसे का
4: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले
3: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
3: एंड
6: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
3: एंड
7: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त
3: एंड
8: डेटॉल फिल्टर ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
3: एंड
1: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
10: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
9: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
11: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल। हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
2: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
3: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
4: इंट्रास सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
0: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
5: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।

तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लाट बनाए फरो।
3: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: Evening drive time with

0: टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.
3: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
4: नई स्कीम,
5: कमिटी,
6: लाट बनाए फरो.
7: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
8: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
10: Like us on facebook.com/fm247365.
11: FM 247365. Evening drive time.

0: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. Ye baddu phailane wale germs ko dur bhagaye.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
3: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
2: Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
4: Shifa wahan se shuru hoti hai jahan kudrat muskurati hai. Schwab is single remedies. कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो

0: दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: किसने कहा था पैसे बचा।

0: जा।
1: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम
3: कमिटी
4: प्लाट बनाए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
7: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
6: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
9: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
10: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
11: facebook.com/FM247365 FM247365

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: ए दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2,500
3: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
4: इंट्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
5: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL

0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बनाए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
11: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
10: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता।
12: जी हाँ, मुझे
2: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
11: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
10: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
2: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
11: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
2: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
10: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
11: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
10: आइए वेट से आगे का सोचें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Today's hit music.

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Hello. Guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
3: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
2: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100 31 साल fm100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: इवनिंग ड्राइव टाइम विद DJ

0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: FM 24/7/365

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

मान कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि

0: अब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: FM 24/7 365 This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात और नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमनगर, अक्रॉस द नेशन,
4: दिस इज FM 100.
5: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
6: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 247365

your location for maximum music.

हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलामु अलैकुम मेरा अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को आज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज शरीफ है? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, ठीक होंगे। और सुन रहे हैं आप FM 100। जनाब दिन है आज फ्राइडे तो अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन फ्राइडे में हम 90s के पॉप गाने में आपको सुनाता हूँ। इंग्लिश ट्रैक्स भी हैं, उर्दू भी हैं, सब मिक्स है भैया। और मैसेज करते हैं आप लोग के HI स्पेस, टेक्स्ट कर देते हैं, सेंड कर देते हैं 3636 बार। मौसम के हवाले से कुछ कहना चाहें, दिन भर की रूटीन के हवाले से कुछ कहना चाहें, या वैसे ही कुछ कहना चाहें, आपका भाई हाजिर है। जनाब आगाज करेंगे इस खूबसूरत ट्रैक से।

0: जनाब वेलकम बैक, और सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस किए चाय स्पेस टेक्स्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं 3636 पर। तो यासुद्दीन बलबन मुल्तान से हमें सुन रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और अय्यूब आफरीदी गुलमानो और निखत को चौसा आम मेरा खास लिखना चाह रहे हैं, चौसा आम और गुलाब जामुन भरा सलाम, वालेकुम सलाम उनकी जानिब से। अयाज उम्मे रुबाब सलाम, मालूम आपको इंतजार करते हैं, मालूम संजय नसरीन और सलाम कह दिया मेरा खास ने सबको, वालेकुम सलाम उनकी जानिब से। मालूम का बहुत इस्तेमाल है उम्मे रुबाब तुम्हारे मैसेज में, ठीक है वैसे। अच्छा जनाब इसके अलावा आपने पूछा थैंक्स, तबियत ओके एंजॉय द शो जानी, बस ये मैसेज एज इट इज मैंने पढ़ लिया। अच्छा जी भाई सुधीर सोलंगी शो नाइस, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई, बड़ी मेहरबानी। और हुमा जी क्या कहने, बिल्कुल नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए, लेकिन एक मिनट की ब्रेक मुझे नजर आ रही, इसके बाद वापस आते हैं। और केयरलेस विस्पर जॉर्ज माइकल, यार ये मेरे बड़े फेवरेट, ये मैं आपको डेडिकेट करने वाला हूं लेकिन एक मिनट की ब्रेक के बाद।
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे।

0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
2: लाइक अस ऑन FM 24/7 365
3: Active, yummy, adorable, 7. Say I've got a crush on you. Keep your eyes, so soon I'll be out.

ऑलराइट जी, वेलकम बैक। अच्छा भैया, बेटी आ गए शहजादे, ओ क्या हाल है? सर जी मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बेटी साहब तुसी की हाल है? तोड़ा की हाल है? बल्कि यूं पूछना चाहिए, थोड़ा जरा पंजाबी में कहीं कहीं मैं स्लिप हो जाता हूँ थोड़ा, लेकिन बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, बिलावल गिजरी से। सर आपका शो सुनकर ना दोस्तों के साथ दो दरिया पे जाता हूँ और 3 बजे तक वापसी आ जाता हूँ। अरे वाह यार, पूरी दुनिया में पिकनिक मना रहा है यार बिलावल। बिलावल नाम में ही कोई मजा है मेरे ख्याल से, इंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को। अच्छा जी अयाज, अब नहीं लिखूंगी मालूम आपको ये ना मालूम कि मैं क्या क्या लिखा भाई। अरे ऐसे मैंने शामिल कर लिया, तुम टेंशन मत लो, लिखो मालूम जितना दिल करे, पेट भर के डाल दो उसमें। अपन को क्या, अय्यूब आफरीदी कह रहे हैं, आज भाई मेरी जानिब से गुलबानों को पश्तो का कोई मस्त सॉन्ग जो है ना वो प्ले कर दो। अच्छा जी, और महानूर को सलाम। वालेकुम सलाम महानूर की जानिब से। अच्छा जनाब, और माह जमीन आ गई है। माह जमीन क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, तबीयत उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही होगी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अच्छा जी, और नौरीन तौसीफ फैसलाबाद से आ गई है। मिजाज मेरे बिल्कुल ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, तमाम हसीन तरीन समातों को मेरा सलाम। हसीन समातों, अरे वाह वाह वाह, इतनी अच्छी उर्दू लिखी आपने। अच्छा ये वाले जो है ना अल्फाज अब सुनने को मिलते ही नहीं, समातें और क्या होता है इस तरह के बहुत सारे। अच्छा जनाब, इस सॉन्ग से शादी की वीडियो याद आ गई। हाँ यार, रोटी खा रहे थे और साथ में ये केएलएस विस्पर का ये ना सैक्सोफोन जो बजर होता है वो वाली ट्यून जो है वो आ रही थी। बिल्कुल आपने सही नक्शा खींचा ये। अच्छा पहले वक्तों में शादी की फिल्में बड़े शौक से बनती थी, अब वो भी फैशन कम ही हो गया है। शादी वाली जो वीडियो जो मना करती थी वैसे उनको देखना तो एक काम लग रहा है, पहले तो फिर भी लोग देख लेते थे, अब इतनी लंबी फिल्म को काम लगने लग गया वो। अच्छा जी, इसके अलावा संजीदा क्या कह रही है? संजीदा कह रही है रुबाब को मालूम है आपको मालूम अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और रुबाब खुश रहे संजू की तरफ से, ठीक हो गया जी, सलाम दो आ गई। रुबाब जी नाराज ना हो जाना। अच्छा जी, मैं नसरीन पटेल यानी मिसेस फारूक आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, बहुत सारी दुआएं आपने दे दी, बहुत बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और गाना इनको पसंद आ गया भैया, केयरलेस विस्पर लगे और पसंद ना आया सके तो हिट गाना है, आज भी आप सुने तो बहुत अच्छा लगता है। आवाज से समात का रिश्ता मतलब रेडियो के लिए। हाँ हाँ जी, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। देखती आंखों सुनते कानों, ये तो ये अल्फाज होते थे पहले, इन लोगों के साथ ये अल्फाज भी खत्म हो गए। अच्छा जनाब, माह जमीन क्या कह रही भाई? तितली जैसा प्यार तुम्हारा, हाय हाय क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या बात है। चले जनाब, सर में दर्द है तो आराम से आपने हमारा एफएम सुनना है, ज्यादा शोर वाले गाने नहीं सुनने। अच्छा भाई, पश्तो गाना अय्यूब आफरीदी आपकी तरफ से, गुलमानो निगत भी मेरे ख्याल से सुन रही है उनको भी, और गाना

0: कॉम्प्रोमाइज़ ना. वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100. अच्छा भाई एक जरा मैं आपको बात बताता हूँ. जो नेट पे हमें सुन रहे हैं उनको तो हमारी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है, लेकिन जो रेडियो से थोड़ी सी कभी कभी शोर भी सुनाई दे देता है उसके लिए माजरत. उसके लिए थोड़ा सा काम हो रहा है, ये प्रॉब्लम भी थोड़ी सी देर में ठीक होती है, या तो पक्की ठीक हो जाएगी या फिर ठीक हो ही जाएगी. लेकिन थैंक यू वेरी मच बिलाल, आपने हमें बताया, ये अच्छी बात है. फौरन ही पता चल जाता है कि क्या चीज कहां से आ रही है, क्या चीज सही है. कमाल भाई टोपी नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूं. कमाल भाई मुझे दिखा रहे हैं विजय तो कितनी सही आ रही है ट्रांसमिशन. अभी वो तो नेट पे सही आ रही है, मैं तो पहले कह रहा हूं. ये रेडियो पे जो एंटीने के साथ सुन रहे हैं ना बेचारे, उनके साथ हो रहा है मसला. कमाल भाई को समान नहीं समझाने में टाइम लगता है, लेकिन समझ जाते हैं, ये अच्छी बात है. अच्छा जी, कभी अपनी जानी से भी कोई सॉन्ग प्ले कर दिया तो जाने जा. अच्छा जी मैं अपनी तरफ से, मुझे पता ही नहीं है कौन सुन रहा है, तो मैं कैसे डेडिकेट करूंगा, मुझे पता है. मिसेस फारूक नेट से आप शायद सुन रही हैं, इसलिए बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई दे रही होगी. नेट वाले मजे में. और अगर आप रेडियो से सुन रहे हैं तो भी मुझे बताया. रेडियो से सुन रहे, वाह वाह वाह. हाँ वो कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन अब शुक्र है कि आवाज रेडियो से बिल्कुल सही सुनाई दे रही है. गुड हो गया सीन. ये अयूब भाई को गाना पसंद आ गया, बीबी शेरी सरकार, क्या बात है, बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, और माँ जमीन की तबीयत पूछ रही है संजीदा, उम्मीद करता हूँ ठीक होगी. सबकी दुआएं जो है, माँ जमीन आपके साथ हैं तो यकीनन ठीक होगी. अच्छा जी, एस भट्टी कह रहे हैं शहजादे मैं पंजाब जा रहा हूँ, प्लीज सॉन्ग तुम चले. मैं नहीं, आज देखो 90s के गाने, तुम चले आओ तो यही दौर का है, 24-25 का आइए. तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये वाला गाना आज के क्यू शीट में सुनाऊं, नेक्स्ट किसी में. अच्छा जनाब क्या मेरे पास बिल्कुल ठीक है रेडियो पर, माशाल्लाह चले जनाब, बड़ी मेहरबानी. बस कहीं कहीं बिलावल भाई को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने फौरन बंदे दौड़ा दिए, मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, और अब ठीक हो भी गए, अच्छी बात है. हाय हाय मैं मजे से सुन रही हूँ. हमारा सोचो कुर्सी पे बैठ के बातें सोचे जा रहे हैं, क्या क्या सुनाए और कौन कौन से गाने सुनाए. हाय अली जफर याद आ गए, और ये ट्रैक मैं आपको डेडिकेट करता हूँ. और जनाब और मैसेज करेंगे के एच आई स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर.
1: Where's the money? Let's stand.
2: Oh yeah.

भाई जना, वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं 3636 पर। बिल्कुल मैं शामिल करता हूं मैसेज, लेकिन अब जो मैं ट्रैक प्ले करने वाला हूं, हमजा समी ने भाई इनको इस गाने को जो है वो गाया है और 90s के दौर में ये लेके चले गए हमें। हमजा समी बहुत आला जबरदस्त ट्रैक आपने गाया है और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कहेंगे, और खुद कंपोज किया है, मुझे तो लग रहा है शायरी भी भाई ने खुद की है। तो हमजा वेल डन, बहुत जबरदस्त। और ये गाना मैं आप ही को डेडिकेट करने वाला हूं, और वो है कैसे,

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जनाब वेलकम बैक सुन एफएम 100 और जनाब थैंक यू वेरी मच इमरान जी कह रहे हैं हर दिन का शो और हर दिन की क्यू शीट आपकी डिफरेंट होती है और यही क्वालिटी एक अच्छे आरजी की। अरे सरकार बड़ी मेहरबानी सर, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं मैं कहां अच्छा हो सकता, मेहनत होती है हम सबकी और शौक। वैसे आरजे का जो है ना ये मैं कह सकता हूँ कि उसका जो टेस्ट है या उसका जो अच्छा या बुरा ये एक अलग बात है, वो आपको उसके शो में नजर आ रहा होता है। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आप उसके ऑन एयर करते हैं जो आपकी तारीफ करते हैं, तुम उसको याद रखते हो अयाज, ऐसा नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैंने हूं जो मैं पागल, अच्छा पागल लिखना चाहिए, मैं पागल हूं जो आपको प्यार करती हूं, कोई बात नहीं बस एसएमएस नहीं करूंगी। मालूम मालूम मालूम मालूम, देखो मैंने सारा मैसेज पढ़ दिया, मैं कहीं ऐसी बात नहीं, ट्रांसमिशन बुरी थी वो भी मैंने पढ़ दिया, हालांकि वो लोग नहीं पढ़ते गोल कर जाते हैं, मैंने कहा पढ़ लूं। तो बिलावल भाई अब कह रहे हैं कि सर ट्रांसमिशन अब ओके हो गई, बेहतरीन हो गया काम भैया। संजीदा कह रही है पहले पहले सॉन्ग सुना रहे हैं और हमजा समी का ट्रैक सुकून से गाया। हाँ जी बिल्कुल जबरदस्त 90s के दौर के गाने, वाह वाह वाह। अच्छा कादिर बख्श भी आगे, कादिर बख्श कैसे हो मेरे भाई, ठीक हो खैरियत से हो? कह रहे हैं कि सलाम अयाज भाई, कैसे हैं आप? और बिलावल और संजू को सलाम, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब 10 बज गए हैं, एक मिनट की ब्रेक भी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद और उसके बाद हुमा के मैसेज भी आ गए वो भी शामिल करते हैं।
3: FM 100's टाइम चेक, इट्स 10 PM।
4: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: 100 FM।
4: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: This program is brought to you by
5: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
3: FM 100, like us on facebook.com/FM247365। FM 247365। FM 100, 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान।
6: एक्टिव यमी डॉरबल जबरदस्त, तो सुनो यार।

जनाब सुन रहे FM 100 आयाज अहमद के साथ और साथ साथ बहुत ही प्यार से भी, कोई गुस्से से, कोई हर तरीके से मैसेज आ रहा है और प्यार से मैसेज कर दिया है जावेद जूठिया, कब से किया है जिया नहीं जाए आपके शो से, आपसे हमें प्यार है, कसम से मिस यू जानिया। बड़े प्यार से इन्होंने मैसेज कर दिया, जो मुझे समझ आया मैंने पढ़ दिया, बहुत शुक्रिया। हुमा जी क्या कहने, अली जफर का ट्रैक ठीक है, सबको किसी गाने की कॉपी, अच्छा वैसे काफी सारे इंग्लिश ट्रैक्स की ना कॉपी, यार एक और मुझे नजर आ गया, ये गाना भी इसके ऊपर भी भाई मोहम्मद अली शेखी साहब ने गा दिया इसके ऊपर, अगर सुनाओ मैं ढूंढता हूं जब तक वो वाला गाना, आप जब तक इसको एंजॉय करें आप। रियो स्पीड वैगन इन योर लैडर

भाई जनाब और गाना मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन ये है कि तू अकेला मैं अकेला इस तरह करके गाना था मोहम्मद अली शेखी साहब का, स्टूडियो के अंदर लहक लहक के गाया उन्होंने, क्या कमाल। वो गाना भी बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था, पीटीवी के दौर का गाना। वो बैकग्राउंड में इसको चलने देते हैं। यार ये भी 80s 90s का जबरदस्त बैंड था। रेओ स्पीड वैगन।

अच्छा जनाब, इसके अलावा जरी नूर कह रही है आज का पहला सॉन्ग ही अच्छा था, सारे सॉन्ग अच्छे हैं। कहना क्या चाह रही हो जरी नूर, कहना क्या चाह रही हो भाई? भाई हर रोज की जो क्यू शीट होती है ना वो जरा डिफरेंट बनाते हैं हम, और इनको शहजाद रॉय बहुत पसंद है, तो क्या ख्याल है ये मैं गाना जरी नूर आप ही को डेडिकेट कर देता हूँ, और वो है कुछ इस तरीके से।

एंड आप वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और मैसेजेस आपके शामिल हो रहे हैं और साथ साथ यार ईद का भी जिक्र होना चाहिए। वैसे पहले वाली ईद है नहीं रही। हमारे सामने मौजूद है नदीम अंसारी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, तबीयत कैसी? ठीक है। कमाल भाई भी हमारे साथ होते हैं, उस्मान भाई हमारे साथ होते हैं और मोहम्मद अली भाई दी ग्रेट, और थोड़ी देर में मुझे लगता है गुफरान जा सतारा जैसे कोई एक होंगे। तो भैया ईद की मैं बात कर रहा था, वो गहमा गहमी थोड़ी सी अब जरा नजर आ रही मुझे, और खास तौर पर जो काला पुल से गुजरने वाले लोग हैं उनको बताऊंगा। इस टाइम पे इतना रश लगा हुआ रोड के ऊपर, तौबा। कल जब मैं शो खत्म करके गया मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई वहां से गुजरते हुए। लोगों ने रोड ब्लॉक किए हुए हैं और जानवर रोड पे बेच रहे हैं। तो वहां के जो लोग हैं उनसे कहीं रिक्वेस्ट मैं करूंगा भाई, ये रोडों पे जो है सिलसिला ना करें, परेशानी हो रही है आम आदमी। अच्छा जनाब, और हुमा जी मुझे लगता है गानों की बड़ी नॉलेज है, और वो कह रही है भाई अलबेला राय। हाँ ये मैंने वैसे सुना, ये भी कोई इंग्लिश ट्रैक है उसके ऊपर ये बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रही आप। और आलमगीर का जिक्र किया, और मेरी क्यूशन में आलमगीर का जो आपने गाना लिखा है अलबेला राय वो तो नहीं है, कभी तुम इधर से गुजर के देखो। क्या ख्याल है, प्ले कर दूं मैं हुमा जी? और आलमगीर का जिक्र है तो बिल्कुल प्ले करते। और संजीदा कह रही है कि रुबाब जी नाराज मत हुआ करें। बिल्कुल रुबाब छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते। अच्छा जनाब, इसके अलावा बिजी हूं पर साथ साथ शो भी, अगर कोई वर्ड मिस्टेक हो जाए तो सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, मैं तुक्के से पढ़ता रहता हूं, इतना मुझे आइडिया हो गया कि क्या लिखना चाह रहे हैं आप। अच्छा भाई, और साली बहुत मुश्किल से मानती है आधी घर वाली होती है। अच्छा ये वैसे लोग क्यों कहते हैं साली? अच्छा साली ऐसा है, प्यार से कहो तो वाकई रिश्ते का नाम है, और जरा गुस्से से तो ये अजीब सवाल हो जाता है। साली पानी लेके आ, ये बुरा लफ्ज होगा, लेकिन साली पानी लेके आओ अच्छा हो गया। देखिए आप एक्सप्रेशन, देखिए पूरा माहौल चेंज हो गया, और माहौल हम चेंज करते हैं आलमगीर के इस खूबसूरत ट्रैक से।

0: वह जनाब सुन रहे हैं 100 अयाज अहमद के साथ और साथ साथ मैसेजेस किए चाइस पे सेक्स करेंगे सेम करेंगे 3636 पर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद.
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.
2: This program is brought to you by
3: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features.
4: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डालें, उनसे उनका बचपन ना छीने. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है. बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है. आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें. वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365
7: Active Yummy Adorable 7
0: जनाब वेलकम बैक. सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे 3636 पर. अच्छा भाई एक मैसेज भाई ने किया और बता रहे हैं कि सिंध सरकार के एक फूड इंस्पेक्टर ने 2,09,98,00,000 की करप्शन की और इसे नौकरी से निकाल दिया गया. कहने के 2 अरब की करप्शन के बाद नौकरी की जरूरत रहती है क्या? भाई बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल. मैं तो कह रहा हूं कोई नौकरी ले ले बंदा यार, लेकिन यार ऐसे पैसों के पर क्योंकि हमारा दाव लग नहीं रहा ना, इसलिए हमें बुरा लग रहा. लेकिन बुरी चीज को बुरा कहना चाहिए भैया. अच्छा भाई ईद आपके साथ ही होगी शो में, वैसे क्या कहते हैं जानी? गुड शो, थैंक यू वेरी मच. गुड शो भी और गुड सॉन्ग भी. ठीक हो गया जनाब. अच्छा जी इसके अलावा नौरीन तौसीफ भी हमें मैसेज कर रही हैं और कह रही हैं कि अयाज भाई एक सिंगर थी अफशां, हाँ सही कह रही हैं आप, इनके सॉन्ग भी प्ले किया करें, वो भी 90s की दौर. बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नेक्स्ट टाइम मैं याद करूंगा उनका. 2-3 गाने बड़े अच्छे थे. अच्छा जनाब अयाज आपके फेवरेट सॉन्ग्स का मुझे पता है, गोल्डन एरा से आपको सुन रही हूँ. आपको मालूम, आप भी आ गई ना मालूम पे. मुझे लग रहा है सारे एफएम वाले जितने भी हैं अब मालूम से शुरू होंगे. अयाज आपको मालूम, अली हुसनैन आपको मालूम फ्रॉम कराची. अयाज भाई इस ईद पर हमारी आपी यूके से आई है. अरे माशाल्लाह मुबारक सर, घर में तो रौनक होगी भाई. और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में लेक्चर. अच्छा बड़ी मुबारक हो भाई, बहुत बहुत. और वो भी आपको सुन रही है. आप ही क्या हाल है आपके? ठीक है. यूके से क्या लाई भाई के लिए? कुछ चॉकलेट चॉकलेट कुछ लाई कि नहीं लाई? सस्ती चीज पूछी है मैंने, महंगी नहीं पूछी. तो ये एक वजह से ये भी एक टैक्स होता है. यूके से आ रहा तो भाई जहां से उनकी वो एक स्पेशल चॉकलेट होती है वो यहां नहीं मिलती है. क्या फ्लेवर और क्या टेस्ट होता है. मुंह में पानी आ गया. चलो इसी बात से दूर से आई तो दूर वाला ही गाना मैं इनको डेडिकेट. आप ही जी आपके लिए ये गाना.

भाई जनाब वेलकम बैक। दूर से कोई आए और आप ही हमारी भी आप ही हो गई हैं, तो वेलकम कहेंगे और अच्छे से आप ईद गुजारें। अच्छी अच्छी ईदियां, इसमें ईदी वैसे कम देते हैं लोग वैसे, लेकिन आप ही आप यूके से आई हैं, लेक्चरार भी हैं आप, अच्छे नोट बनाए होंगे, मेरे मतलब है डॉलर शॉलर पाउंड, वहां तो पाउंड चलते भाई, यहाँ एक पाउंड क्रीम लेने चले जाते हैं हमें लग पता जाता है कि कितनी महंगी है, और पाउंड का तो फिर अपना वजन है भैया। वाह वाह वाह। अच्छा जनाब अय्यूब आफरीदी अयाज भाई, आपको मालूम के काफी अरसे से गुलबानो शो से गायब है, वो आपकी बड़ी फैन थी। अरे ऐसा ना कहें, थी क्या मतलब, होंगी इंशाल्लाह जहां भी रहे और खैरियत से रहे वो। और आफरीदी भाई आपको भी मालूम हो गया, मैं मुझे लगता है अपने शो का नाम मालूम ही रख दूं, मैं ना मालूम ना रखूं मालूम रख दूं। अच्छा जनाब आए हाय मिसेस फारूक क्या बात है, आपकी बातें बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं सारी चमले मार रहा होता हूँ, एक भी काम की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी आप पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है काम की बातें लोग सुन सुन के वैसे ही परेशान हो गए, बस कर दो। अच्छा आज यूके वाली नादिया जहां पत्नी बिजी होगी मेरे ख्याल से। अच्छा जनाब थोड़े थोड़े गाने सुनाता हूँ यार, बहुत सारी क्यू शीट मैंने आज कुछ जरूरत से ज्यादा रख ली है। लीजिए जनाब सीट चेंज हो गई है, नदीम अंसारी चले गए हैं और गुफरान भाई आ गया। गुफरान भाई अस्सलामु अलैकुम, कैसे मिजाज हो, ठीक हो, मजे में? गुफरान भाई ने सीट संभाल ली है और मेहनत के साथ। यार ये काम जो है ना, हम लगता बड़ा आसान है लेकिन होता बड़ा मुश्किल है, लेकिन गुफरान भाई की भी अब प्रैक्टिस हो गई है। अच्छा जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं। थोड़ा सा सीक्वेंसर के गाने मैं अपनी क्यू शीट में लाजमी रखता हूँ। मिसबा भाई से प्यार है मैं, जो इसके सिंगर थे, बल्कि सिंगर हैं,

0: Here we go.
1: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
2: We'll be right back after this commercial break.
3: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हंडे लाया है।

0: 1.6 Special Edition और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: वेलकम बैक सुन रहे FM 100 और मैसेज आ गया है किसका भैया बिलावल भाई गिजरी से. सर हर शो का नाम रखना चाहिए क्योंकि नाम से ही पहचाना. अभी नाम रखा हुआ तो ये देखो ये नाम रखा हुआ. फुल वॉल्यूम जनाब फुल वॉल्यूम तो अधिक करके सुन रहे थानू पता नहीं लग रहा. लेकिन एक बात में दम है कि फुल वॉल्यूम तो सारे शोज का नाम हो गया ना और हम तो कर रहे हैं डिफरेंट शो. इस बारे में सोचा जा सकता है फुल वॉल्यूम 90s ये वाला शो कर ले. फुल वॉल्यूम ओल्ड इज गोल्ड पुराने फिल्मी गाने. फुल वॉल्यूम ब्रांड न्यू सॉन्ग ये वाला कहानी बन सकती है. सोचते हैं सरकार. अच्छा जनाब ब्यूटीफुल ये सॉन्ग हमारी जानिब से आपके लिए यादें आए हाय. लो जी फिर एक और बड़ा हिट गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ. अच्छा गाने बहुत सारे मैं जल्दी जल्दी करके शॉर्ट शॉर्ट करके आपको सुनाता हूँ.

जनाब क्या बात है जनाब, और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे इंडस म्यूजिक IM वो याद आ जाता है, वहां से ये वाले गाने, उसकी जबरदस्त वीडियोस, इनके इंटरव्यूज आर्टिस्टों के, बड़ा भाई बहुत काम किया था यार इंडस म्यूजिक ने, बहुत ही जबरदस्त चैनल था ये, और अब मैं उसको मिस करता हूँ, और जब भी ये इस तरह के गाने में सुनता हूँ तो वो चैनल मुझे याद आ जाता है। लो जी थोड़ा सा जरा चिचोरा, चिचोरा नहीं कहना चाहिए यार, हल्ला गुल्ला वाला गाना एंजॉय करें।

क्या बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक, एनर्जी वाला। और ये बैंड था स्ट्रिंग फेलो, लाहौर का ये बैंड, कमाल, छल्ला दे जा निशानी, तेरी मेहरबानी। अच्छा जनाब, अली हसनैन कह रहे हैं भाई आप ही की जानिब से बहुत थैंक्स फॉर डेडिकेशन, मोस्ट वेलकम आप ही जी। और कह रहे हैं आप कॉल लेते तो आपकी बात भी, कोई बात नहीं, आप ही भी यही है ना ईद तक, तो वो इंशाल्लाह ईद तक हमारा जो फोन है वो ठीक हो जाएगा। और जरा यूके की बातें सुनेंगे, उनसे लेक्चर हम भी तो सुने। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रैक, और वो भी कमाल गाना भैया,

था जनाब डमडम डीडी और नाजिया हसन का ये गाना आज भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई जाने जहाँ का मैसेज आ गया लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है बहुत शुक्रिया आपका। राइट जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने।

0: best of 90s, 80s, and today's.
1: We'll be right back after this commercial break. Break.
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे. अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे. क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे. अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे. क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हंडे. लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स.
4: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका है. पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है. नौजवान हमारी

0: to spend my life being a color.
1: Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye.
2: Hey, hey. जनाब क्या गाना याद दिला दिया भाई, ब्लैक और व्हाइट. यार ये माइकल जैक्सन दोबारा हिट हो गया, ये हर दौर में हिट है ये आदमी. अच्छा जनाब अली हसनैन कह रहे हैं, जी भाई जरूर ईद पर बात करेंगे आपसे, आप ही और संजीदा आप ही शायद जानती हो निम्रा अहमद राइटर को, वो मेरी आप ही की स्टूडेंट थी. अच्छा जी दसो संजीदा जी. वैसे संजीदा चुपचाप जो है वो गाने सुन रही है, पसंद आ रहा है. और इसी तरह मिसेस फारूक भी और हुमा जी भी. हुमा जी गाना ये वाला तो आपका फेवरेट होना होगा मेरे ख्याल से. अच्छा जनाब आप शामिल करेंगे आवाज आवाज बैंड की, और ये गाना यार किसी दौर में मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा है वैसे.

जनाब जो ये कहता है समझो गाने अच्छे बनाए थे भाई, बयाज भाई गाने पसंद आ गए गयासुद्दीन बलमन आपको। और भाई वो जानती है भाई, संजीता जी जानती है भाई इनको। और बिलावल किसी से पूछ रहे हैं ईद पर शो की टाइमिंग क्या होगी। सर वही टाइमिंग होगी पुरानी वाली, 6 to 9 शाम 6 बजे से और 9 बजे तक। राइट जी, नेक्स्ट ट्रैक। यार ये गाना भी कमाल है।

राइट जनाब, टाइम स्पीड से गुजर रहा है। एक और ट्रैक एक दो बल्कि जल्दी जल्दी सुनाता हूं और उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक ईद की टाइमिंग, पहला दिन और दूसरा दिन।

क्या बात है जनाब, गाना इतना अच्छा था काटने को दिल ही नहीं किया। अच्छा जनाब, वैसे ये गाना भी आज की क्यू शीट में था, हालांकि इनसे मेरे कुछ बातों पे है इख्तलाफ, सही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी सिंगर अच्छे थे यार। जवाद भाई, जवाद अहमद, वो कह दिए सैया, क्या गाने थे यार इनके जबरदस्त।

जनाब इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अयाज अहमद को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा नमाज।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 fm247365

facebook.com/fm247365 fm247365.

मेरी गल सुने इत्थे बै वेलकम बैक। हाय हाय क्या गाना है यार, पसंद आया तुम्हें? दसो तो सही भाई, मैसेजेस करेंगे आप 3636 पर। अच्छा आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से पूछूं एक पहेली। दुबली पतली सी गिरानी, ऊपर आग और नीचे पानी, मुंह चूमो तो शोर मचाए, बात करो तो चुप हो जाए, हैं जी ते हैं जी बताए क्या रिडल है? दुबली पतली एक रानी, ऊपर आग और नीचे पानी, मुंह चूमो तो शोर मचाए, बात करो तो चुप हो जाए, दसो की हैं जी ते हैं जी। ये आपने मुझे बताना है 3636 पर। और सबसे पहले फीता काटा है आसिफ अली ने क्लिफ्टन से। यारे सोने सलाम टू यू एंड ऑल लिसनर्स। सर दिन कैसा गुजरा? ओके टेक भाईजन, एंड क्या हाल चाल है? और एक ट्रैक उन्होंने कहा डेडिकेट कर दे, बिल्कुल कर देंगे जनाब। और कुछ? अच्छा भाई दुबई से मैसेज आया, भाई दुबई से भी लोग सुन रहे हैं, वड्डे वड्डे लोग, हमारी बहुत पुरानी लिसनर बहुत अरसे के बाद शो में शामिल हो रही हैं, उनको वेलकम करेंगे जनाब फरहीम को। फरहीम कैसी हैं यार, ठीक ठाक हैं? ओके ठीक हैं। और दुबई का मौसम कैसा है जरा बताए तुझे तो उनका भी मैसेज आया है, तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, एंड वाओ वाओ वाओ हो रहा है सही जा रहे हैं भाई इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों जाए फिरते हो सर्दियों की शामों में। ईद ईद ईद उल अज़हा बड़ी ईद सर पर है जनाब, अब तो छुट्टियां भी अनाउंस हो गई हैं और बकरा मंडियों पर गाय मंडी पर भरपूर तरीके से रश है, बहुत से लोग वहां पर होंगे और हो सकता है वहां पर भी कोई सुन रहा हो। और यार कोई बकरा बेचने वाला या गाय बेचने वाला बंदा कोई सुन रहा है? अगर सुन रहा है तो यार एक मैसेज मार दो, और आप लोग भी सब मैसेज कर सकते हैं के जाए स्पेस, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाना के जाए लिखना स्पेस देना अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड करना है 3636 पर। तो जी बकरा मंडी और गाय मंडी के हवाले से बात हो रही है। अच्छा इस बार कुछ चीजें और देखने में आ रही हैं और अजीब सी देखने में आ रही हैं, और वो ये देखने में आ रही हैं कि गाय मंडी और बकरा मंडी के अलावा और भी बहुत सारी मंडियां लगी हुई हैं, मतलब एक मेन जो एक बाजार लगता है उसके अलावा छोटे छोटे छोटे से बाजार डिफरेंट जगहों पर लगे हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ये तो होता ही है, लेकिन उसके नाल नाल पूरे पूरे खानदान निकले हुए हैं भाई। लोडिंग रिक्शा में जो है बकरे भरे हुए हैं और बेच रहे हैं मोहल्लों मोहल्लों में, गली गली मोहल्लों में जाके, सही जा रहे हो भाई। और कीमतें हबीबी आसमान पे, वाह वाह वाह वाह वाह, लेकिन लोग हैं कि धड़ाधड़ खरीद रहे हैं भाई। ओके टेक कुवते खरीद है। सवाल जो मैंने फ्लोट किया हुआ है वो एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं। पहली है दुबली पतली सी एक रानी, ऊपर आग और नीचे पानी, मुंह चुमो तो शोर मचाए, बात करो तो चुप हो जाए, बताओ क्या? बता दो ना। अच्छा आज के शो में मैं आपको खाना बताओ गुमरान भाई भी अंगड़ाई लेते हुए, हाँ यार वाह वाह वाह, आपको दूसरे मिसरा पसंद आया उसका ज्यादा है ना खैर जी गुफरान भाई ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, अब आपके जवाब का इंतजार है। लेकिन ट्रैक्स के हवाले से आज की क्यू शीट जो है वो बड़ी मजेदार किस्म की है, पाकिस्तानी पॉप ट्रैक्स आज आपको सुनाऊंगा, एक नया और एक पुराना, वाह वाह वाह वाह क्या बात है। अभी आपको नया सुनाया था, मजबूर आजकल ट्रेंड पे भी चल रहा है, फुल टाइम रील्स वगैरह इसकी बन रही हैं, लोग बना रहे हैं इस पर, तो वो आपने सुना, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और एक पुराना पॉप ट्रैक, फिर एक नया, फिर एक पुराना, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, तो इसी बात पर आपको लेके जाते हैं एक पुराने से ट्रैक पर। लेकिन वो जीन्स अभी तक घिसी सी नहीं है, अभी तक चल रही है ये जीन्स, एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको पुरानी जीन्स और गिटार मोहल्ले की छत वो और मेरी यार लोगों छत पर भी बहुत काम चलते थे आग मटक्का हो रही होता था छत पर पहुंचे तो सामने वाली खिड़की ओए हो ये पुराने जमाने की बातें बता रहा हूँ अली हैदर साहब के जमाने की इसीलिए हिट था गाना ये और मैसेजेस तो आपके आ ही रहे हैं यार ईद के हवाले से मेरे दिमाग में अजीब से सवाल आ रहे हैं बकरे ईद के हवाले से ईद उल अजहा के हवाले से अब सोचें अगर गुफरान भाई आप सुनेंगे नहीं सुन रहे गुफरान भाई मैं दिल कर रहा है गुफरान भाई भी सुने वो उस पर जरूर चर्चा करेंगे जो मेरे जहन में बात आ रही है वो आपसे भी करना चाहूंगा लेकिन पहले क्यों ना मैसेज पढ़ लूं गुफरान गायब हुआ इस वजह से और जनाब हमारे अयूब अप्रेदे या हबीबी जन जिगर जीते रहो खुश रहें सलामत रहें टू ऑल लिसनर लाला आपसे हम नाराज है थोड़ा थोड़ा सही यार आगे किधर गायब रहते हैं लाला यार रौनक ही नहीं होती अयूब लाला आपके बगैर और आप ये बताएं कुर्बानी क्या कर रहे हैं वो जो दो आपने बकरियां पाली थी वो बकरी के दो बच्चे जो थे उनका नाम क्या रखा था मुझे नाम भूल गया मैं आवाज आ रही है आपको खामखा आ रही है जब मैं आपको बुला रहा हूं तो आप साइड पर चले गए हवा नहीं आ रही थी हवा चाहिए तो लाला जरा सब बकरियों के नाम तो बताओ जरा वो जो बकरे बच्चे पैदा होते बकरियों के बाबा बच्चे उन बच्चों के नाम क्या रखे थे आपने अब तो बड़े हो गए होंगे वो अयूब लाला अगर आप सुन रहे तो जरूर बताना अच्छा भाई आसिफ अली ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त बता दिया तो अभी मैं एक सवाल करना चाह रहा था गुफरान भाई मेरे जहन में एक सवाल आया है एवं आया है अगर मिसाल के तौर पर कुर्बानी के जानवर को अल्लाह ताला ये ताकत दे देता कि वो बात कर पाते तो फिर क्या होता जरा कुछ बताइए इस हवाले से अच्छा एक और भी बात है कि बकर ईद में जाहिर है जानवर जो खरीदे जाते हैं तो हर घर की कोई ना कोई एक स्टोरी जो है ना वो जरूर सामने आती है हॉरर टाइप की स्टोरी जो होती है ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं भाई किसी की टांग टूट गई हाथ टूट गया बैल ने या बकरे ने ऐसा ठूसा मारा यानी कि समझ रहे हैं ना तो कोई ऐसी स्टोरी आप लोगों के साथ गुजरी हो तो वो भी आप जरूर जिक्र कीजिएगा अयूब अफरीदी लाला आ गया खेरा जाने जिगर उन बकरियों के नाम रखे थे माहीन और निगर 47 डिग्री गर्मी का प्यार भरा सलाम तो आपका कुर्बान करने का इरादा है तो गुस्सा उतारने का इरादा है या नहीं ये जरा बताओ हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ फैसलाबाद से आ गई हैं और कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई मिजाज कैसे ओके ठीक है जनाब सदा हंसते मुस्कुराते रहे आमीन हाय अल्लाह भाई इन्होंने पहेली का जवाब दे दिया भाई पहले पहेली मैं बता दूं क्या है दुबली पतली सी रानी ऊपर आग और नीचे पानी मुंह चूमो तो शोर मचाए बात करो तो चुप हो जाए कह रही मोमबत्ती सही कह रही है भाई क्या बात है भाई आप खैर आपका जवाब आया गुड है ये होना चाहिए यार स्पिरिट होना चाहिए आसिफ ने जवाब दिया और नौरीन हमेशा जो है सवाल का जवाब जरूर देती है चाहे वो सही हो या गलत हो पार्टिसिपेट तो करना चाहिए ना कभी हुआ है कोई वाकया बकरा भाग गया गाय भाग गई बैल भाग गया और चोट वोट आ गई और ऐसा भी होता है कि कुर्बानी करते वक्त भी जानवर बिफर जाता है यार तो जानवर है ना भाई अब अगर वो बात कर रहा होता तो बोलता भाई साइड एक मिनट साइड पर टांग मार दूंगा दुलत्ती मार दूंगा भाई और एमजी आ गई है कह रही है अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप शो बहुत अच्छा है आपका हमेशा की तरह पहली का जवाब है मोमबत्ती हाय अल्लाह जी दो आ गए जवाब भाई तीन हो जाएंगे ना तो ओके टेक हो जाएगा काम बकरियों के नाम माहीन और दूसरे का नाम नान नान क्या मतलब वो नान खाती हैं बकरियां जरा बताइएगा तो सही अच्छा अभी रखा है नान
अच्छा आज आपके मैसेज में कोई ना आम आया और ना ही आम के साथ साथ आप कुछ और भी खिला रहे थे, क्या खिलाते हैं आप? क्या गोफरान भाई कुछ कह रहे हैं यूब लाला? क्या यार देखे यार, समझाए इसको यार, क्या बात कर रहा है आपके लिए यार भाई। अच्छा चले आप बता दें आम और क्या था। आगे बढ़ते हैं, जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहना आ गई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अयूब लाला को बहुत पसंद है और समी को भी पसंद है। समी तुम्हें भी पसंद है, समी अभी आया नहीं है। हाँ अच्छा, तरबूज का जो है वो मौसम है। वैसे यार तरबूज बड़े नकली आ रहे हैं भाई, इंजेक्शन देकर जो है ना उनमें रंग भरा जा रहा है। सलाम कैसे हैं वाली साहब, कैसे हैं संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है जरीन नूर ने। जीती रहो मेरी बहना। और फरहीन शहजादी भी आ गई हैं। लो भाई दो दो फरहीन हो गए, एक तो हमारी प्यारी सी बहना है फरहीन शहजादी और एक फरहीन दुबई। आप दुबई कहेंगे भाई या यूएस कहें? यूएस में है दुबई में है? बता दो फरहीन, मैसेज पार्टिसिपेट भी करो थोड़ा सा। हबीबी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है एने भाई, कैसी तबीयत है मिजाज सब? सुनने वालों को मेरा सलाम। कैसी तबीयत कैसे मिजाज, वाह वाह। तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा, वाह यही माशाल्लाह। चले भाई इसी बात पर हम आपको लेकर जाते हैं। हाँ भाई अब आप सुन लें जरा गुफरान भाई। अयूब अफरीदी लाला कह रहे हैं कि जिगर माहीन आम खाती है और वो जो आपके पास माहीन जो पाल रहे हैं आप, वो आम के छिलके खाती होगी। वो बकरी है ना भाई, उसका नाम रखा हुआ है। और निगत नाम बकरी गुलाब जामुन खाती है, और निगत नाम बकरी गुलाब जामुन खाती है। गुलाब जामुन तो अयूब लाला जो है ना गुफरान को कहते थे। एक नान खाती है और एक आम के छिलके खाती है, ऐसा ही है ना भाई? बकरियों की बात कर रहा हूँ अभी, तो मिक्स नहीं कीजिएगा दोनों को। चले अभी इसी बात पर हम आपको एक और गाने की जानिब लेके जा रहे हैं। पॉप ट्रैक है जनाब और ये नया वाला है।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको जगवार फाइव स्टार स्नैपचैट स्टोरी बिलाल सईद का गाना जनाब नया और आपको पसंद आया होगा। एंड जगवार क्या है पहले ये बताएं, किसी को पता है जगवार क्या है? हाय कहेंगे सब लिसनर्स न्यू हैं, आप इतने सालों के बाद आई हैं फरीन, मैंने साल बाद किसी याद किया है, तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। पुराने लिसनर्स के किन किन के नाम आपको याद हैं जरा नाम लिखकर भेजिएगा आप मैसेज में, तो फिर हम देखेंगे कि आपकी याददाश्त कैसी है, बादाम खा रही हैं या आप या नहीं खा रही हैं।

मैं मैसेज देख रहा था कौन सा है भाई। हाँ ये रहा जनाब, अमीन भाई आ गए। सलाम मैंने भाई शो वीआईपी बिंदास बोले तो झकास। उमर रुबाब को सलाम, सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा। बिल्कुल करेंगे। गाना तो बड़ा जबरदस्त चॉइस किया यार। ओके ओके चलाएगा चलाएगा, मेरा फेवरेट है ना। अच्छा ये ओरिजिनली चलाऊंगा मैं, वो वाला नहीं चलाऊंगा जो नया आया हुआ है, रीमिक हुआ हुआ है। अच्छा भाई कार है, कौन कार है, है जरा दस तो सही। फरीन है कार, पता किसको कहते हैं पश्तो में, कहते हैं काम को। सरकार दी तुम्हें क्या काम है अयूब लाला, जरा बताओ मैं ठीक बोलते हैं ये गलत बोलते हैं। और शहजादी आ गई है, कह रही है नदीम भाई अगर जानवर बात कर पाते तो वो ये कहते कि हमें कुर्बान करने का सोचना भी नहीं, वरना हम आप लोगों को कुर्बान कर देंगे। वाह वाह वाह वाह वाह वाह। नहीं खैर जानवर ये नहीं बोलते, आप बताएं क्या बोलते हैं। फरीन ने तो बता दिया, वैसे मैं भी बताऊंगा कि क्या बोलते हैं। और अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आ गए हैं, कह रहे मेहंदी हसन या सज्जाद अली का गाना सुना दे। खिताब गुल्लाला नसीम कुरैशी साहब, समी शेख, इमरान रियाज, अयूबा अफरीदी और मेरे वालिद साहब को उन्होंने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, अरे वाह वाह। तो नाम बताएं जनाब फरीन, पुराने लिसनर्स के जिन जिन के आपको नाम याद हैं, मेरे को नाम बताओ। अयूब अफरीदी कह रहे हैं महानूर को सलाम, जीबीएन के नाम जावेद अख्तर साहब का कोई जबरदस्त किस्म का उबलता हुआ गाना जो है वो चला दें, ताकि उस सॉन्ग से जीबीएन भी एक्सरसाइज करें और मैं भी। वाह वाह वाह वाह वाह, जावेद साहब ने क्या कोई जिम खोला हुआ था जिसके लिए वो गाने गाते थे। खैर आपको एक बहुत जबरदस्त सा गाना जावेद अख्तर साहब का सुनाएंगे, जबरदस्त सा, आपको पसंद आएगा और जीबीएन को भी पसंद आएगा। जैगवार, अच्छा जैगवार के बारे में मैं पूछ रहा था, जैगवार क्या है, तो उसने बताया कार है, यानी ये CAR कार गाड़ी है, ये गाड़ी नहीं है, ये ब्रांड है, कार्स का ब्रांड है। वाह वाह, मेरी फेवरेट कार है यार जैगवार। वाह वाह वाह यार, आप उनके पास अगर पैसा हो ना बहुत सारा एक्स्ट्रा तो जैगवार लूंगा। हाय हाय, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर यानी कि समझ रहे ना आप, दम निकले। अच्छा कह रहे हैं जिगर ठीक है कहते हो, ठीक कहता हूँ क्या, ठीक कहता हूँ यार। आप अपनी बकरियों का ख्याल रखें यार, एक को आम के छिलके खिलाएं और एक को गुलाब जामुन खिलाएं। नौरीन कह रही है जब हम कराची में रहते थे, वाह वाह कराची में रहते थे, तो तौसीफ साहब ने 4 बकरे लिए और घर की छत पर बांध दिए। एक दिन बच्चे दोपहर के वक्त बकरा देखने छत पर चले गए, एक बकरा शायद खुला हुआ था, बच्चा उसके पीछे भागे तो बकरे ने जंप मारी और सीधा नीचे गिर गया। अल्लाह, फिर क्या हुआ कुछ ना पूछे, बकरे की टांग टूटी या बकरे साहब खुदा हाफिज हो गए, ये बताइए। शुक्र करें कि बकरे ने बच्चों को टकरे नहीं मारी। अच्छा मैं ऐसा सीन देख चुका हूँ, गफरान भाई आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, मैं ऐसा सीन देख चुका। अभी एक किस्सा जो है नौरीन तौसीम ने बताया, उस किस्से पर मुझे एक किस्सा याद आ गया। उन्होंने बोला कि जब कराची में रहते थे तो छत पर 4 बकरे बांध लिए थे, तो बच्चे दोपहर के वक्त बकरों को देखने गए तो एक बकरा खुला हुआ था, बच्चों ने उसको खूब भगाया, उसने छत से छलांग मार दी। तो एक मैंने कहा शुक्र करें कि वो बकरे ने छलांग मार दी,
वरना मैंने ऐसा देखा है कि बकरों ने बच्चों को जो है ना वो टक्कर मारने वाले जो बकरे होते हैं क्या कहते हैं उसको ठुड यार एक बच्चे के साथ मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसने बच्चे को जो है ना यानी कि समझ रहे ना काफी छोटे मोटे आई थी उस बच्चे को तो इस चीज का यार आप लोग ख्याल रखें स्पेशली क्योंकि बच्चों की पसंदीदा चीज है ये और बच्चे बड़े शौक से जो है वो जानवर देखते हैं जहां आ रहे होते हैं तो एहतियात भी हमें करनी चाहिए बच्चों के हवाले से बच्चों को छोड़े नहीं आप ये मतलब जाओ जाओ जाकर बकरे देख कर आओ गाय देख कर आओ जानवर आए ऐसे ना छोड़े बच्चों को जानवर खुदा ना खास्ता कोई बिदक जाए और बच्चा उस जर्द में आ जाए उसकी तो नुकसान भी हो सकता है तो लिहाजा ये इस चीज का आप सब ने बहुत ख्याल रखना है अपने बच्चों के हवाले से कि बच्चों को जानवर देखने के लिए अगर उनको बहुत शौक हो रहा है और जाना है उन्होंने तो कोई किसी बड़े को साथ जरूर भेजें बड़े बच्चे को खुद नहीं जा सकते तो बड़े बच्चे को भेज दें जो समझदार हो जो उसका ख्याल रख सके लाला मैं सही कह रहा हूँ ना अयूब लाला दासवकान और बहुत सारा मैसेज आ गया है अयूब आफरीदी भाई का भी आया है गुफरान भाई अयूब आफरीदी कह रहे हैं कि गुफरान आप कैसे हो गुफरान भाई आपने एकदम स्क्रॉल हो गया ना बहुत सारे मैसेज आ गए आपने समी की ट्रैश तरह लिखा हुआ है या ट्रैश लिखा हुआ है खैर समी की तरह उंगलियां रंग ली हैं कि अब तक नहीं समी की शादी होने वाली है ना रंगने से मुराद ये मेहंदी शेंदी लगाई ये भाई माशाल्लाह से शादी शुदा है इनके दो तीन मॉडल भी है माशाल्लाह से आठ मॉडल दो हैं कह रहे अभी आठ का इरादा है अभी तो दो ही हुए हैं और जनाब अभी आपको लेकर चलते हैं जनाब एक और ट्रैक के जाने पर ये ट्रैक

कह रहे अभी आठ का इरादा है, अभी तो दो ही हुए हैं। और जनाब अभी आपको लेकर चलते हैं जनाब एक और ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक पॉप गाना है पाकिस्तानी, मैं एक पुराना और एक नया चला रहा हूं, तो ये पुराना पॉप ट्रैक है एंड आई होप ये भाई लेजेंड्स जिनका गाना सुना रहा हूं, और ये बकरों की आवाज भी है, आपको आती ना डम डम डम डम डम डम ढोल बज रहे होते ना डी डी डी डी डी डी डम डम डम डम डम। क्या हुआ गफरान भाई परेशान हो गए, इसमें डम डम डी डी डी डी।

वेलकम बैक सुनियो डम डम डी डी डम डम ये थी नाजिया हसन भाई पॉप क्वीन नाजिया हसन हैं जी जी हैं जी। तो जनाब जो जो लिसनर्स

0: वेलकम बैक। तो फरीन, देखें आपको जावेद अख्तर साहब का ट्रैक मैंने अपनी आवाज में सुनाया है, हमारी सिंगिंग आपको कैसी लगी बताइएगा जरा, यानी कि समझ रही है ना आप। अच्छा भाई, अयूब आफरीदी कह रहे हैं जिगर गफरान भाई तो पक्का खिलाड़ी है। गफरान भाई तो पूरा रंगा हुआ है। बिल्कुल सही कहा जनाब आपने, हाँ अब सही आ रहा है ना उसकी वजह से। हाय हाय, तो जनाब गुफरान भाई आप बुरे रंगे हुए, वैसे बात सही है। अयूब लारा ने सही कहा है। और अमीन कह रहे हैं उमर बाब ने आप कुर्बानी का जानवर लाया लिया, आप गए नहीं अभी तक। मैं तो खैर गोश ले आया, दो आदत आपको एक चाहिए ले लेना। खैर गोश, खर खरगोश लाया यार, खरगोश समझते हैं। यमीन भाई है कह रहे हम खैर, मैं खैर गोश पढ़ा दू। गोश दिमाग में सवार है ना, तो गोश के साथ खरगोश, वैसे खर पता है किसको कहते हैं। अगर आप खर को अलग कर दें और गोश्त को अलग कर दें, अलग अलग बढ़े तो इसके भी मायने होते हैं। खर गधे को कहते हैं और खर और गोश्त तो यानी कि गधे का गोश्त। खैर ये इन्होंने इनका मैसेज ओरिजिनली पढ़ लेता हूं। ये कह रहे हैं कि मैं तो खरगोश ले आया दो अदद, आपको ये एक चाहिए तो ले लेना। खरगोश है 50,000 का है भाई। ये बताओ खरगोश दो दांत का है या चार दांत का है। ए अमीन भाई जरा बताओ यार कितने दांत का खरगोश है, उसके बाद खरगोश के बारे में सोचेगा। और आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब। कहां गया मैसेज, ये रहा। अच्छा जनाब ये क्या कह रहे हैं, अयूब आफरीदी गफरान भाई सॉरी मुझे पता नहीं था कि आपका क्या आप, मैं सही तरह समझ नहीं पाया एक लफ्ज, फिर मैं गफरान भाई तक ये जो है ना आपका मैसेज पहुंचाऊंगा। गफरान भाई जरा ये पढ़िएगा आपके बारे में लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सलाम कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, जॉब है काफी टाइम में रिक्वेस्ट किया, काम काम ये है नाला को बुलबुल ताजिकिस्तानी सॉन्ग अगर हो जाए तो, ये है निगौर ताजिकिस्तान है, निगौर ताजिकिस्तान है भाई। हम ये गाना देखते हैं निगार आपके लिए, अगर ये गाना मिल जाता है। नहीं समझ में आना आपके भी, अयूब लाला एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा। आपने जो गुफरान के लिए मैसेज भेजा ना कि पता नहीं था कि आपका, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा, तो लिहाजा आप वो मैसेज दोबारा भेजे हमें। गोश, गोश मीन्स कान ईयर, फारसी है गोश गुजार, लेकिन ये खरगोश है। हाँ ये गोश हो गया ना, नहीं उन्होंने खरगोश नहीं लिखा था, उन्होंने खरगोश्त टी था साथ, गोश्त होता है ना गोश्त, वो लिखा था। आप समझ में आया फरीन, तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा भाई ताजिकिस्तानी निगौर के लिए गाना हम अभी देखेगा। और समी का मैसेज पढ़ ले यार, अब गफरान भी पास है। पहले समी के मैसेज सुन लो। अस्सलामुअलैकुम नदीम भाई, सलाम टू गफरान भाई एंड ऑल लिसनर्स। ट्रांसमिशन में बहुत शोर आ रहा है, थोड़ा सा उसमें पानी डालो सही हो जाएगा। और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, रेडियो पे ट्रांसमिशन ठीक नहीं आ रही है। हाँ
1: हमने तारे साफ कर लो ना,
0: तारे भी साफ कर लो यार, थोड़ा पानी के साथ साफ करना। वाह वाह वाह वाह गुफरान भाई द ग्रेट। गुफरान भाई मुझे खरगोशों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कह रहे कुर्बानी के लिए कैसे रहेंगे ये और इन्होंने भी दो खरगोशों की तस्वीर दिखाई है मुझे। अच्छा जनाब, काला जोड़ा बाय नदीम अब्बास, ये खरगोश सही है लेकिन ये चार दांत का खरगोश है, ठीक है ना जी। तो काला जोड़ा क्यों पहना रहे हो भाई, वजह? अच्छा काला जोड़ा पॉप सॉन्ग है ये बताइए, क्योंकि मैं तो पॉप सॉन्ग चला रहा हूं। अभी हमने आपको सुनाया था डम डम डी डी, यानी कि पुराना ट्रैक सुनाया था आपको, पॉप सॉन्ग। वाह वाह यार, ये बकरा कितने का है? गुफरान मुझे तस्वीरें दिखा रहा है बकरा कितने कितने के बिक रहे हैं, इसको बहुत शौक है जानवरों का। हाय गुफरान भाई, इस तरह तो होता है यार इस तरह के कामों में। ईद कुर्बान है और तंग कर रहा है मुझे। अच्छा भाई वो कह रहा है कि कुर्बानी के जानवर इन्हें भी दिखाइए भाई, समी को भी, अगर हो सके तो समी को भी कुर्बानी के जानवर दिखाए। समी भाई आप गुफरान भाई से रिक्वेस्ट करें, वो आपको दिखा देंगे, ऐसे थोड़ी नजर आएगा। गुफरान भाई खुद कह रहे, गुफरान भाई खुद भाभी के आगे बकरा बन जाते, बेटे तुम तो बकरा नहीं कुछ और बन जाओगे, मुर्गा बन जाओगे। बेगमाद के सामने सब ऐसे ही होते हैं जनाब, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। चले इसी बात पर अब हम आपको लेके जाते हैं एक बहुत प्यारे से गाने की जानिब। ये पाकिस्तानी ट्रैक है, मतलब पॉप ट्रैक, नया ट्रैक है और ये हमारी बहुत ही प्यारी सी शहजादी आती है, प्यारी सी बहना इकरा, उसको हम डेडिकेट करेंगे, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, फरमाइशा तेरिया ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुने हो। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, और 3 बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, किए चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। एक सवाल पूछा हुआ है, सवाल नहीं है रिडल है। दुबली पतली सी एक रानी, ऊपर आग और नीचे पानी, मुंह चूमो तो शोर मचाए, बात करो तो चुप हो जाए। अयूब लाला आप जरा बताएं आपका क्या ख्याल है, ये क्या है? अयूब लाला आपकी जगह गुफरान ने जवाब दे दिया। वैसे अगर तवक्को यही, वो भी यही कहेंगे। अच्छा जनाब, और अयूब लाला ही कह रहे हैं, जिगर संजू के घर अभी एक बच्ची मेहमान है। हाँ तो जरीन नूर, हमारे अयूब लाला जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बताते हैं, इन्फॉर्मेशन इनकी गलत नहीं होती। तो हमारी जो संजू हैं उनके घर अभी मेहमान हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, मेहमान तो मेहमान होते हैं ना भाई। फरहीन कह रही हैं कि नहीं आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, UAE से सुन रही है वो भाई। समी अब अपनी तारे धो लो, पक्का पक्का तारे धो लो, और हो सके तो मोबाइल भी धो लो, और मोबाइल के बहाने मुंह भी धो लो। यानी कि समझ रहे हो ना। हाँ और आगे बढ़ते हैं जनाब, सभी का ही आ गया जवाब भाई। UAE में रेडियो से सुन रही हैं क्या? जवाब तो बड़ा अच्छा है भाई, नेट पे ठीक आ रहा है, रेडियो पे ठीक नहीं आ रहा, तो तुम रेडियो धो लो। अरे भाई कुछ तो धो लो। अच्छा जनाब गुफरान भाई सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपका गुफरान भाई वो मैसेज अब समझ में आया। गुफरान भाई सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपका रंग भट्टी में पका हुआ है। अरे यार अयूब लाला आपको पता नहीं है ये पहले तंदूर में रोटियां लगाता था, रंग पक्का हो गया इसका, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सलीम अहमद साहब कह रहे हैं गुफरान भाई आप कैसे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं आप? आप यकीन माने उन्होंने 3 मुर्गियां कुर्बानी की हैं, चील, कबूतर, जहाज, उड़ने वाली चीज, मछली। कह रहे मछली कुर्बान की है। ये गुफरान भाई आप तो ऐसे बता रहे थे, मुझे वो याद आ गया खेल, चील उड़ी, कौवा उड़ा, पता नहीं क्या क्या उड़ाया गुफरान भाई आपने। खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों दाज फिरते हो सर्दियों की शामों में। अच्छा एक और भी भाई हमारी रेगुलर लिसनर हो गई थी, मुश्की नहीं आ रही भाई, मुश्की किधर हो तुम? क्योंकि गाना मैं ऐसे चलाने लगा था कि वो मुश्की पर फिट बैठता, तो वो हम उन्हीं को डेडिकेट कर देते हैं जैसे इकरा को किया, तो ये ट्रैक जनाब हम मुश्की को डेडिकेट करेंगे। मुश्की आपके लिए गाना एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक। सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चुड़ियां शड़ंग कर गए। आजकल तो बकरे और बकरियों को, गाय और भैंसों को भी चुड़ियां टाइप की चीजें पहनाई जाती हैं, और वो भी शड़ंग शड़ंग कर रही होती हैं।
1: हैं जी ते हैं जी।
0: अच्छा जनाब, मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। और हमारे अयूब लाला क्या कह रहे हैं? कह रहे सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। सलीम एमन भाई आपको कह रहे हैं, सलीम भाई आपका मुकम्मल कलर हुए कितना अरसा बीत गया है। इनके दो शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा शनाख्ती कार्ड इनका चल रहा है, इतना अरसा गुजर गया है। तो आपको तो पता ही है कि शनाख्ती कार्ड एक्सपायर कब होता है, कम से कम 50-100 साल के बाद ना। तो अंदाजा लगा लीजिए कि पक्के हुए हुए इनको कितना अरसा गुजर गया। और जनाब रिसीव्ड पहली बार मैसेज किया है, उर्दू काम आती है, सॉन्ग का नाम वरना नो एसएमएस। निगौर निगौर आपके लिए, अगर आप ये धमकी ना देते ना या देती तो भी हम आपके लिए गाना चलाते, लेकिन ये धमकी देकर आपने अच्छा नहीं किया, ये गलत बात है। नो धमकी, मोहब्बतें चलती हैं हमारे पास, लव लव लव के साथ चलते रहे तो जान भी दे देंगे, धमकियां तो हम किसी की भी नहीं सुनते। और जनाब गुफरान भाई आप कैसे हैं? अच्छा ये तो हो गया था मैसेज। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा भाई अयूब आफरीदी कह रहे हैं, सलीम भाई इन दोनों बकरियों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इन दोनों के सामने मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा। ओए होए होए होए, देखो यार सलीम भाई समझ रहे हैं आप? आप कोई चूजा वूजा इधर उधर से पकड़ ले, यानी कि समझ रहे हैं ना सलीम आफरीदी भाई, सलीम मेमन भाई। समी क्या कह रहे हैं? अजीब लोग हैं यार नदीम भाई, माशाल्लाह से इतने हैंडसम हैं गुफरान भाई। अच्छा आपको पता है अगर अभी भी दूसरी शादी करना चाहे गुफरान भाई तो आराम से कर सकते हैं। आपकी तारीफें कर रहा है भाई समी। वो कह रहे नहीं भाई तो कह रहे पहले तू पहली तो कर ले भाई, दूसरी का मशवरा दे रहे
2: बाद में आराम का पता लगेगा।
0: तुम पहले शादी कर लो, कुछ अरसे के बाद तुमसे पूछेंगे। पहली बीवी जो है वो मर्द को इस काबिल नहीं छोड़ती, इतनी जिम्मेदारियां डालती है मर्द पर कि वो तौबा कर लेता है कि भाई जी नहीं की इतनी जिम्मेदारियां, अल्लाह माफी। वैसे बात फैक्ट है, फैक्ट है बात में। इतनी जिम्मेदारियां होती है कि आदमी सोच भी नहीं, अगर दिमाग में आ भी रहा होता ना। वैसे इसीलिए तो आप देखते हैं ना कि अक्सर शादीशुदा अफराद के सामने अगर दूसरी शादी की जिक्र भी करें तो वो फौरन खेल जाता है, लेकिन मजबूर होता है, क्या करूं यार।
2: दो सेकंड बाद ही
0: फिर उसको सब याद आ जाता है, दूध लाना है, अंडे लाने है, सब्जी गोश्त। फिर वो बोलता है कि दो दो थैलियां, नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
2: फिर वो सिर्फ जन्नत की
0: तस्वीर, हाँ फिर वो सोचता है कि चलो यार जन्नत में जाएंगे तो उरे मिल जाएंगे। तुम्हारी रिक्वेस्ट भाई जरूर चलेगी, फिक्र नहीं करो, आई एम नॉट डोंट वरी। हमारे लाला अयूब लाला कह रहे हैं यार जगत फोन को जल्दी सही कराओ, कराते हैं कराते हैं। वाह क्या बात है सोने हो, तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली। सलीम मेमन साहब कह रहे हैं मैं अब्बा का ये गाना मैं खुद ही गाता रहता हूँ, अक्सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ फुल टाइम उनके गानों की। और जनाब
1: हबीबी बी बी बी बी बी बी बी
0: अच्छा जी वांटेड हजारों परफ्यूम लिया है आपकी चॉइस नाइस। अरे भाई मेरी पसंद किसको पता चल गई, बेहतरीन है नदीम भाई। अमीन चार्ली को गर्ल्स रोक रोक कर पूछ रही हैं
1: खुशबू कहां से लगाई।
0: ابے غلطی ہو رہی ہے آپ سے، وہ لڑکیاں نہیں ہوں گی، سونگتا کون ہے زیادہ؟ اچھا لالا کہہ رہے کہ پہلی کا جواب مجھے نہیں معلوم. ارے لالا آپ کو پتا ہوگا، لیکن گلبانو بتا سکتی ہیں، مگر وہ کنجوس ہیں بڑی. ہاں شاید میسج اسی لیے نہیں کرتی. سنو سمی صحیح کہہ رہا ہے آج ایف ایم پر خیر خیریت بہت ہو رہا ہے، خرخراہٹ بہت ہو رہی ہے. اور سمی بھائی آپ بھی بتائیں آپ کیسے ہیں، قربانی کر رہے ہیں یا نہیں؟ ابے سلیم میمن، اچھا سلیم میمن جیسے جو لوگ ہیں نا، سلیم میمن جیسے جو لوگ ہیں نا جو ہر ایک سے پوچھ رہے تھے آپ قربانی میں کیا کر رہے ہیں، تو ان سے اگر پوچھو نا آپ کیا کر رہے ہیں، بولے میں تھیلیاں کر رہا ہوں. وہ شاپر بیگ کا پورا جو ہے نا باکس لے کر آتے ہیں، یہ تھیلیاں کتنی جمع. سلیم بھائی برا نہیں بنائے گا، مذاق چل رہا ہے. آج آپ جو ہے نا وہ فل ٹائم ٹارگیٹ پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کے سوال ہی ایسے آ رہے ہیں. اچھا لالا ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ اس بکری کے بارے میں جو بول رہے تھے میں نے بتا تو دیا. سلیم میں سن نہیں رہا ہے. سوال کا جواب ہے ماچس. زرین نور کہہ رہی ہیں واہ واہ موم بتی اور ماچس، دو جواب آ چکے ہیں. اچھا بھائی اب ادھر کے میسجز کو تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں.

समी के लिए मैसेज किया है लाला ने कि समी जिनको भूख हो खाना उनके सामने रखा जाता है, समझ रहे हो? गुफरान भाई जो है ना वो उनका पेट भरा हुआ है, भूखा मैं हूँ, खाना मुझे भेज दो। ये समझे आप इनकी बात को या नहीं समझे? समी अगर समझे तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस बात पर कहा है। अच्छा भाई वेब पर सुन रही हूँ, फरहीन कह रही है हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, गोफरान भी समझ गया है जो है यूब लाला के मैसेज को। शहजादी कह रही है मर्द हजरात जन्नत में 70 हूरे पाने के बावजूद भी यही सोचेंगे कि पड़ोसी की 70 हूरे कैसी होंगी। फरीन सही कहा तुमने, फरीन शहजादी जो है, शहजादी सही कहा तुमने। अभी दो दो फरीन आई हुई है ना, तो ये फरीन शहजादी जो है इसको शहजादी कहेंगे हम। ये बात सही गई है। ओके ठीक। अच्छा भाई जरीन कह रही हैं मेरी संजू से बात हुई थी, आज मेहमान चले गए, अरे एक मेहमान बच्चा बाकी है अभी, वो अपना बच्चा छोड़ गए। अच्छा जनाब क्यों ना अब आपको एक गाने की जानिब लेके जाया जाए। तो अभी हम जो ट्रैक सुना रहे हैं, अभी सांवली सुनो नहीं सुनाया था ना, तो अब नया ट्रैक चलेगा। नहीं नहीं पुराना ही चला लेते हैं। तो अभी जो ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं अमीन की जानिब से, हम हाय अल्लाह जी उमर रुबाब को डेडिकेट किए हैं। तो उमर रुबाब आपके लिए गाना, हमें पूरा यकीन है कि आप सुन रही होंगी। तो ये ट्रैक समी की जानिब से भी और मेरी जानिब से भी, एलो फड़ो।

Welcome back. कभी तो मुझसे पर एतबार करना, मेरी वफा पे एतबार करना. Beautiful track and I hope you all like it. कभी तो मुझसे इकरार करना.

0: जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको एक बार फिर बता दें, मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने हो। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, और 3 बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपने प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636। उमर उबाम आ गए हैं और कह रही हैं सलाम, और सब सुनने वालों को भी सलाम, शुमा खूबी अमीन को भी सलाम, हाल खूब औस्ती जी, आते हुए दे देंगे भाई आपको, आप बेफिक्र हो जाए यार, नहीं लेके जाएंगे कहीं यार, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, वाह वाह वाह वाह। तो सुने हो, हमारे क्या नाम है, समी साहब कह रहे हैं, सलीम भाई क्या हो रहा है, सेल मार्केट से शॉपर ले आए क्या ईद के लिए? ये भी सही कह रहे हैं आप, सलीम भाई आज अयूब लाला, गुफरान भाई और समी भाई और साथ में मैं भी, रियाली के समझ रहे हैं ना आप, आपके साथ साथ है, आज आपको पकड़ा हुआ है, आपके मैसेज ही ऐसे आ रहे हैं कि कमाल के, हर मैसेज का जवाब आ रहा है और जायकेदार आ रहा है। कभी तो मुझसे
1: हबीबी इकरार करना,
0: मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को, अच्छा अच्छा पहले तो सबसे पहले मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि एक सवाल फ्लोट किया हुआ है मैंने, रिडल है यानी कि पहेली,
1: दुबली पतली सी एक रानी, ऊपर राग और नीचे पानी, मुंह चूमो तो शोर मचाए, हाय एलर्जी, बात करो तो चुप हो जाए, बताएं क्या
0: ये आपने मुझे बताना है। एंड एंड एंड एंड मैसेजेस आप कर रहे हैं 3636 पर, और अभी मैं आपको एक और फरमाइश की जानिब लेके जा रहा हूँ, और ये फरमाइश जो है हमारे अयूब लाला जो हैं उन्होंने कहा है, जनाब जी भी इनको डेडिकेट कीजिएगा, जावेद अख्तर साहब की आवाज में उन्होंने कहा था, तो अयूब लाला जरा आपने सुनना और आपने बताना कि गाना कैसा लगा है आपको, ठीक है जी? तो ये ट्रैक डेडिकेट टू जीबीएन फ्रॉम अयूब आफरीदी।

कहेंगे बेदर्दा राशा राशा बेदर्दा राशा दासियो खाना यार, और कह रहे हैं कि भाई मैं डांस करने लगा हूं शायद जीबीएनबी झूमे। जबरदस्त सॉन्ग महनूर, आप भी दुआ कीजिए। अच्छा भाई, अयूब आफरीदी भाई ने एक गुजारिश की है, और वो ये की है कि उनके एक दोस्त हैं जो कि उनसे खफा हैं, और दुआ ये की है कि आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनका दिल नरम करे और अयूब भाई की जानिब माइल करे। तो हमारी दुआ है भाई कि आपकी नेक नियत ही है, तो अयूब भाई मैं भी दुआ करता हूँ, आप सब भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैसेजेस कर रहे हैं आपके, चाहे स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। और जनाब आपके मैसेजेस की जानिब जाएंगे, मगर मैं भी एक गाना ढूंढ रहा हूँ। हमारे प्यारे से सलीम मेमन भाई ने एक फरमाइश की हुई है, तो उनकी फरमाइश भी पूरी करनी है हमने। समी की भी फरमाइश अभी पूरी करनी है, वो भी हम जरूर करेंगे। आप लोग बेपैखर रहो यार। अब मैं अच्छा कोशिश किया करें जब आप कोई फरमाइश करते हैं तो गाने का जो टाइटल है वो दुरुस्त बताएं। गाने के बीच के बोल अगर आप बता देंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, और ढूंढने में भी बड़ी मुश्किल होती है। यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अभी मैं एक ढूंढ रहा हूँ गाना, तो गाना ही नहीं मिल रहा यार। मिल गया जना, मिल गया। हाँ जी, तो नदीम बस आप ऐसा ही शुरू किया करो, अच्छा है लगते हैं। मालूम इंतजार करता हूँ आपका, सामने को भी सामी को भी सलाम। आज फोर्सी सॉन्ग लगाना है और अयूब साहब अमीन को डेडिकेट करना है। नदीम लव यू, ओके टेक जिगर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाप। और एने भाई से मेरे लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट करवा दें, फारसी का सॉन्ग चार्ली। खुश होता है जब आपका मैसेज आता है। वाह। अच्छा भाई, आसिफ कह रहे हैं कि ओके भाई आपने मेरी डेडिकेशन प्ले की, शुक्रिया। कब की भाई, मैंने तो की नहीं। जब तक मेरी जिंदगी है आपके शो में मैसेज नहीं करूंगा, खुदा हाफिज। बिल्कुल खुदा हाफिज जना, धमकी नहीं चलेगी भैया। बात यह है आसिफ, देखो मेरा बच्चा अगर सुन रहे हो अभी तक, तो मैं ये शो जो है ये एक फैमिली शो है, और यहाँ पर हम सब जो है वो एक फैमिली की तरह है। जब आपकी डेडिकेशन, आप जिस किसी को भी डेडिकेट गाना करते हैं हमारे शो के पार्टिसिपेंट में से, और उनको वो बात अच्छी ना लगे कि उनको आपकी जानिब से कोई गाना डेडिकेट कर किया जाए,

जब आपकी डेडिकेशन, आप जिस किसी को भी डेडिकेट गाना करते हैं हमारे शो के पार्टिसिपेंट में से, और उनको वो बात अच्छी ना लगे कि उनको आपकी जानिब से कोई गाना डेडिकेट किया जाए, तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। आप किसी और को डेडिकेट करना चाह रहे हैं, 100 बिस्मिल्ला करके नाम लेकर हम आपका गाना डेडिकेट करेंगे। और ये बात बताने के बाद भी अगर आप जो है मैसेज नहीं करना चाहते तो मत कीजिए भैया, हमारी मोहब्बत हमारा प्यार आपके साथ है और रहेगा। और जनाब आगे बढ़ते हैं, अय्यूब लाला आप कैसा है, खुश है? गुड है। फैसलाबाद में जोरों शोर से बारिश हो रही है जनाब, माशाल्लाह। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पंजाब में वैसे भी बहुत दिनों से काफी गर्मी जो है वो शदीद थी, और अब बारिश हुई है तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला रहमत की जो बारिश है वो हर जगह फरमाया, आमीन सुम आमीन। अच्छा भाई, जवाब दुरुस्त दे दिया है नौरीन ने, पहले मोमबत्ती का था अब अगरबत्ती कह दिया। मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा भाई अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि भाई मेरा मैसेज शो में आपने शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीते रहे, मुस्कुराते रहे भाई। दोनों फरीनी कहाँ गायब है, एक शहजादी और दूसरी दुबई, दोनों गायब हुई हुई है, ये तो अच्छा बात नहीं है। इसी बात पर हम जाएंगे एक और ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे जनाब समी की जानेब से, जिन्होंने काला जोड़ा पहना हुआ है उनको, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। आगे बढ़ते हैं जनाब, आपके मैसेजेस को फिर शामिल करते हैं। आसिफ कह रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता। भाई मुझे तो आप सब बहुत अच्छे लगते हैं यार। आसिफ आप भी, एवरीवन लव यू। लेकिन क्योंकि आप जो मैसेज कर रहे हैं तो आप खुद पूछें भैया, मेरे शो में अगर मुझे कोई ये कहेगा कि मुझे फला बंदा डेडिकेशन दे रहा है, आप प्लीज मुझे नहीं किया करें डेडिकेट, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर किसी को एतराज है और वो मुझे कह रहे हैं मेरे शो, मेरा शो है, उसमें आप भी शामिल हैं, हर कोई शामिल है, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर। और जनाब अयूब लाला क्या कहते हैं, उमेर बाप को सलाम जिगर, उमेर बाप को फारसी का वो गाना सुना दो। अच्छा अब ये तो गाना ढूंढना लाला मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम कोई ना कोई गाना चलाएंगा। अच्छा हमनवा इत्र मेरे एक दोस्त को बहुत पसंद है। मैं उस दोस्त को जो कि मुझसे नाराज है, तो अगर मेरा दोस्त आपकी दुआओं से दोबारा से आ गया, तो मैं उसको हमनवा इत्र जो है उसका पूरा डब्बा जो है तोहफे में दूंगा। क्या बात है लाला, इसका मतलब मैं भी आपसे थोड़ा सा नाराज हो जाऊं, तो फिर मैं जब आपसे दोबारा मिलूंगा तो मुझे भी कोई डब्बा मिलेगा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। सभी कह रहे हैं शुक्रिया नदीम भाई। समी बस शुक्रिया ओनली, यार ये तो गलत बात है। लो जी शहजादी भी आ गई और फरीन भी आ गई। कराची वालों का जो गर्मी ने हाल किया हुआ है, अब तो कराची वालों को चांद पे जाके रहने पड़ेगा। ये चांद पे नहीं, मेरे ख्याल है सूरज पर घर बनवाए। सॉन्ग पसंद आ रहा है फरीन को, थैंक यू वेरी मच। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। अच्छा ब्रेव समझ में आ रहा है, जे बी समझ में आ रहा है, जेबे फ्रेम ब्रेव नदीम। अच्छा आपने अपना नाम लिखा है जबी ब्रेव, या ये इसका कोई मायने है? आपका मैसेज मैंने पढ़ा है, मुझे समझ में कुछ नहीं आया है। अगर आपको मैसेज लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है तो जिस तरह आपको समझ में आता है आप मैसेज लिख दो, मैं हिज्जे करके पढ़ दूंगा, डोंट वरी। अब फौरन से पेशतर, वक्त क्योंकि बहुत कम तेजी से गुजर रहा है और फरमाइशें मैंने आप सबकी पूरी करनी है, तो जो जो आई हुई है, तो ये डेडिकेशन है जनाब सलीम मेमन की जानिब से हमारे इरफान मेमन को, तमाम मेमन फैमिली को, हमारी प्यारी प्यारी सी जो मेरी बहनें हैं मेमन फैमिली में, मानूर मेमन है, दुआ मेमन है, रूसा मेमन है, और एक मेरी प्यारी सी बहन सायरा मेमन, कैसी हो, और जितने भी मेरे मेमन बहन भाई हैं उन सबको ये ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं जनाब। किनकी जानिब से? सलीम मेमन की जानिब से।

सुने हो आप सबको, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है भाई। अच्छा भाई नदीम भाई, भाई की जानिब से जो सॉन्ग प्ले हुआ बहुत अच्छा था भाई। सलीम भाई की जानिब से जो सॉन्ग प्ले हुआ बड़ा अच्छा सॉन्ग है भाई। अय्यूब आफरीदी कह रहे हैं, सलीम आफरीदी भाई, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। वक्त फुर करके उड़ रहा है और मैंने एक पहेली पूछी थी आपसे, और पहेली कुछ ये थी कि दुबली पतली सी एक रानी, ऊपर आग और नीचे पानी, मुंह चूमो तो शोर मचाए, बात करो तो चुप हो जाए, बताओ क्या। बहुत से लोगों ने मोमबत्ती बताया, कुछ ने माचिस बताया, लेकिन इसका असल जवाब जो है वो आसिफ ने सबसे पहले सही दिया था, और हमारी प्यारी सी मैना नौरीन तौसीफ ने भी दुरुस्त दिया, और गुफरान भाई ने भी दुरुस्त दिया। जवाब है उसका हुक्का। हुक्का जो है पानी की आवाज जो आती है ना उसकी, मुंह चूमो तो शोर मचाए, बात करो तो चुप हो जाए, दुबली पतली सी करानी, आग ऊपर और नीचे पानी। तो ये थी पहेली आज की जो कि हमने आपसे पूछी थी। उसके अलावा हमने थोड़ी बहुत जो है तंजो मिजाह के साथ जो है बात की, जो हमारी ईद उल अजहा है इसके हवाले से, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आई होगी। हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर, नए लिसनर हैं, और उन्होंने नाम क्या था, मैं जरा उनका नाम देख लूं, उनकी भी फरमाइश को हम पूरा करेंगे ना, उनसे हमने वादा किया था भाई। गो के धमकी भी दी थी उन्होंने, लेकिन वो फर्स्ट टाइम उनका मैसेज आया था, निगौर का गाना सुनना था, हमारे ताजिकिस्तानी ट्रैक जो है वो सुनना था, और आपने अपना नाम तो नहीं लिखा, तो आपका वो जो ट्रैक है वो हम जरूर चलाएंगे। तो जनाब आपकी फरमाइश, निगौर ताजिकिस्तानी आपकी फरमाइश, एलो पढ़ो।

वेलकम बैक जनाब, ये हमने उनकी फरमाइश पूरी की और अभी उम्र रुबाब तो बौखी है, उनको भी तो हमने गाना डेडिकेट करना है और वो भी फॉर से। उम्र रुबाब ये आपके लिए हैं।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो एंड आई होप कि ये मेरे बाप को भी पारसी सॉन्ग पसंद आए होंगे। सवाल का जो जवाब था वो आप तक पहुंचा दिया और मैसेज आया है जनाब फैसल अरब साहब का। नदीम भाई सलाम बखैर, शो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। मेरे ख्याल है फैसल साहब वही हैं जिनको उर्दू सही नहीं आते हैं, ताजिकिस्तानी। और चितो रास्ते जी होवासम जॉन जो रास्ता। और अयूब लाला कह रहे हैं, अयूब आफरीदी भाई कह रहे हैं कि गुफरान भाई, समी भाई, सलीम भाई को अगर मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत। अरे नहीं भाई, हम एक फैमिली की तरह हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। और फारसी सॉन्ग उनको बड़ा पसंद आया। अयूब लाला इस तरह की बात भाई, गुफरान ने तो बता दिया अभी, और समी की भी मैं गारंटी लेता हूँ और हमारे सलीम मेमन भाई की भी गारंटी लेता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। और सलीम मेमन भाई भी और हमारे समी साहब भी, इनके हवाले से मैं ये बताऊं कि इनसे दोनों से जो है मुलाकात हो चुकी है मेरी। वो FM 100 आए थे और अयूब आफरीदी साहब भी आए थे, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं तबीयत के। और हमारी कोशिश यही होती है कि 2 घंटे जो हैं वो थोड़ा सा तफरी रहे, हल्ला गुल्ला रहे, आदमी अपनी टेंशनें भूल जाए। थैंक्स सोनियो सॉन्ग के लिए और लाला आपका भी बहुत शुक्रिया, और आज शो में बहुत एंजॉय किया। और मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माधुर चाहता, क्यों लगेगी भाई बुरी, शॉपरी लेके जाना ना भैया। कुर्बानी वाली बात क्यों बुरी लगेगी किसी को, आप तो ये पूछ रहे हैं भैया आप क्या कुर्बान कर रहे हैं। हमने तो बहुत से लोगों ने तो दिल कुर्बान कर दिया। खैर जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अब आप लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह ताला होगी एतवार वाले दिन यानी कि संडे को दोपहर को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सा पाकिस्तानी पॉप ट्रैक आपको डेडिकेट कर रहा हूं। ये पुराना ट्रैक है और उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, Across Pakistan, this is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.